पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी तो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी हुक्म ने हुए प्रवान तक किसने का महल पाए सी कसम पावे सो करे मन चिंदे सो फल पाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी।

चक्र चिहनेर बरन जातेर पातन हिन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकते हे चल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण सा गणिजै।

अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए जिस सिमरत सब किल विख नाश है।

निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कपड़ पत परमेश्वर राखी

हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटे जम की बाकी, हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साध जना की, दिन अर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की, तुम वड पुरख वड अगम गोचर, तुम आपे आप अपाकी,

राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां।

जेको खावै जेको पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और धारो। तम संसार चरण लग तरिया

दिल हो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कंडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के।

इनके सब पाप निवारी, हम ऊपर कृपा कर स्वामी। रख संगत तुम जो प्यारी, जो हर सेवह संत भगत।

फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द बजंत फेरी रहो सह सताव नैन नन नैन है तो हे गौ सह समूरत नन एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए ते सदै चानण सब मह चानण होए गौर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिष भावै सो आरती होए

संभाले सबना। जिन करतै करना किया चिंता पी करनी ता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, इस जो हारी स्व

तो लव्या बपेकिया देही दुख दिया सवे जिया अपना किया। अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्त्र ना पहरे एनिस कह रहे मोन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता।

जी की फतेह। शिलोंग महला पहला। आनड़िए मानड़ा काए करेहे, अपनड़े घर हर।